लगे आकाशवाणी दिफू पीनिया ट्रांसमिशन अजय मेक अंगडें अलोंगबेन कोपीपी असोन अमूसी कपार जुपनिक जिमा चेथानदाम मेक्सिने पर्फाई ट्रग्रा मिनिट गेपर नांगलीतुम आरना मफान कंगडु कार्डमलून अजय मेक अंगडें अलोंगबेन असोन असोन अलून आरजु इकलोंगजी पर्फाई ट्रग्रा मिनिट थोंग्याब्रा फोपर नांगलीतुम पीनिया हिरजेर अजय मेक अंगडें अलोंगबेन हिरजेर की हिर आरजु इकलोंगजी पर्फाई ट्रग्रा मेनी थोंग्याब्रा सेरक्यापर नांगलीतुम पिनिया सारलामथे अजय मेक अंगडें लोंगपेन सारलामथे आरजु इकलोंगजी पर्फाई ट्रग्रा मेनी प्लीक्यापर नांगलीतुम कार्बी लुनबारी मजाय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई ट्रक्सीरा मेनी क्यापर नांगलीतुम क्लिमसोमार अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन क्लिमसोमार अजय मेक आरजु इकलोंगजी पर्फाई ट्रक्सीरा मिनिट प्लीक्यापर नांगलीतुम लुन चितो अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई नेरक्याब्रा मिनिट थमक्याबर नांगलीतुम आलम बिलोम अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन कचुनिंगरिया लुन नांगलीतुम आरजु इकलोंगजी पर्फाई सिरक्याब्रा मिनिट ख्रेप हपर नांगलीतुम हिंदी लामरजाना लुन अजय मेक अंगडें लोंगपेन जुमिसेन जुमिसेन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई सिरक्याब्रा मिनिट प्लीक्याब्रा फोपर नांगलीतुम इंग्लिश लुन अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई क्याब्रा मिनिट ख्रेप हपर नांगलीतुम तिरिमकाय अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लामजे आरजु इकलोंगजी पर्फाई क्याब्रा मिनिट थमक्याबर नांगलीतुम लामकान अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लामकान नांगलीतुम आरजु इकलोंगजी पर्फाई क्रेसी अपर नांगलीतुम सोआरलोआ सेयांग टोंग अजय मेक अंगडें लोंगपेन चिहु चिपुत आरजु इकलोंगजी लापेन लामजेर आरजु इकलोंगजी आर्नी दिली पर्फाई के थमरा मिनिट प्लीक्याब्रा फोपर नांगलीतुम गुवाहाटी पेन कपाचेताक असन असन कार्बी अजय मेक आरजु इकलोंगजी पर्फाई प्लीरा मिनिट थोंग्याबर नांगलीतुम दिमासा लुनबारी मजाय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई प्लीरा मिनिट प्लीक्याब्रा फोपर नांगलीतुम बोरो लुनबारी मजाय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई फोपर नांगलीतुम रोंगरु बजाय मेक अंगडें लोंगपेन चिहु चिपुत आरजु इकलोंगजी पर्फाई फोरा मिनिट थोंग्याबर नांगलीतुम पिनिया सारलामथे अजय मेक अंगडें लोंगपेन सारलामथे आरजु इकलोंगजी पर्फाई फोरा मिनिट थोंग्याब्रा इसियापर नांगलीतुम कार्बी लुनबारी मजाय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई फोरा मिनिट फोक्याबर नांगलीतुम लामजेर अजय मेक अंगडें लोंगपेन लामजेर आरजु इकलोंगजी पर्फाई थ्रगपर नांगलीतुम सांगपिमार अजय मेक अंगडें लोंगपेन चिहु चिपुत आरजु इकलोंगजी पर्फाई थ्रग्रा मिनिट थोंग्याबर नांगलीतुम हिंदी लामरजान काली अलून अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई थ्रक्सियापर नांगलीतुम कार्बी डेट लोंग रिचिंग हन लुन अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लुन आरजु इकलोंगजी पर्फाई थ्रक्सीरा मिनिट क्रेप हपर नांगलीतुम आसामिस लामरजान अलून अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन अलून आरजु इकलोंगजी पर्फाई थ्रक्सीरा मिनिट थोंग्याबर नांगलीतुम ओक प्राण अजय मेक अंगडें लोंगपेन चिहु चिपुत आरजु इकलोंगजी पर्फाई नेरक्याबर नांगलीतुम इंग्लिश अलून अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन अलून आरजु इकलोंगजी पर्फाई नेरक्याब्रा मिनिट क्रेप हपर नांगलीतुम लामकान अजय मेक अंगडें लोंगपेन लामकान आरजु इकलोंगजी पर्फाई सिरक्याब्रा मिनिट क्रेप हपर नांगलीतुम लामजेर अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन लामजेर आरजु इकलोंगजी लापेन किजुत सि नांगलीतुम पर्फाई सिरक्याब्रा मिनिट थोंग्याबर आलम बिलोम अजय मेक अंगडें लोंगपेन असन असन कचुनिंगरियालुन आरजु इकलोंगजी लापवानपर नांगलीतुम पिनिया ट्रांसमिट

지하선왕 바만 시팡메토레 구르담 니나리 젤리야

ังหุมรีสีปุยเนมอยได้นางที่บีไอหลังซิมเฮอาลุน

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में यंत्र इंडिया की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी बन की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित 3rd IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थी। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मैसर्स एडुक्विटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई।

0: अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट

0: श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद

0: अपने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंप व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज, ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती बालू खेती नष्ट है, नष्ट होले तो जो पैसा दे तो ना हमारा लाभ है, बाकी खेतियों को लेते लाभ तो पाने आम जन पाल
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहित जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144 47 कॉल करक।

0: आय साजू नंगजी लांग लहो बिलेंग के बूमीर से तांग मोचर लहो माय पदा पेन लापु आना फोंग लो लबांग सो साकी जून तनो नंता जून दौर दिला आय राखी के दोपु आहरमु लापु हेलोले लहो मो अंता जून नंग कोगिया पोट लांग मसा अब सो चुपलार थू चोम नंगजी लांग लहो सापु ओ लाके हो ओहो आसास से अपो वेदेलो ले लहो दिहुन ओ पे दिहुन दिहुन आ ई गफंजोर पाने थो नुन पे नंगली ले लांग से आरो कम ले लहो माय
1: दिहुन जर पान हन पे नंगले ई गेलान दिलो
0: हा ए
1: नंगली फान को पिनी नंग ई पीपु मा
0: हला सापो नंग थोनी ग्रेट हपु ओ
1: निदिवान इको हो
0: ओय दाम कुंग थारवे मेन फु
1: सापो होलो खायो
0: ओय डाक बिते काय कोंग मन जो
1: जो ला लंग पोंग पेन जो
0: ओय
1: निली फान बिले कि मि गिना इक सोर नति लो खा
0: ला तांग दे तिति कान चो लो हो हा बसा हेमसार पीता नांग की पु दुन का पास्तिक सो काली
2: बा नेलेंग हाय ता ने पोबेन का चिंग किया लो जि पिथेक ओ हे
1: ई नेंग दे हो नंग ता ति पना मन था ए मा नि लो हाय फान बिले कि मि पाबुत तोय चले दा हो दा ना हो हेम हो
0: ओ दिहु नंग ता हरित पे नंग किली लो मा पे
2: कलांग लुपो
0: ए
2: ओ नि ता ला हाय हेम बिदम नंग लांग हो ओ नि ए के वांग वे लांग पो
0: ए
2: हन जांग की फुल लोग लांग
0: ला हे
2: पिनी के वांग दा प्रांग ती तांग हो
0: ए
2: कु पिने काम दो कु बो
0: ओ आय ओ सो ठुके ला ने सो पो हार लोंग बिया सो नंग जी ए काम के क्लेम का छिपा दुख का छिती पिनी अहम अरित चे लांग लो ने सारु अबोतोर ने फांता नांग लांग लो ला पे नमु मारा तुम अपन आंता चे लांग लो
2: पिति के लांग लो पु
0: थांग ता काली नांग इ के थे लाम सी पसी मुतुर बम ति पे
2: कुपी लो नि इ के थे लाम के
0: नींग का रोंग सी नांग इ के थे अपन के रो नांग लांग था है पे पिनी नांग इ के थे काम के क्लेम का चिपा दुख का चीतिंग इतुम का दो का व्यापार नंग कला ना जे फान लोक लो टिपे हो
2: कलांग लो पो अंता ने की मु पेंटा कुपिने तो ने प्रे गलम अप हे पो
0: हां गलम त कली लाई सोन वे
2: ओ नि स्कूल अ पोर देर टांग लो पो
0: अ कलांग लो हे पे नंग इसी कुरा टेम देर टांग लो हे
2: को सोन पिने ग चीनी लो पो
0: ए ने फान के लो ठेक थे पुतों आते मन ता लैंग थे थे बुहे ओए पाय बांगो नो नंग लांग नो नो जो पाय ला हेलो जो निखुरी के ला हर पोंग लोंग के तोक हेलो जो
2: ओए बापो नंग खुरी के साय नी बेन सिगा सिरी बापो
0: ला लो ती पाय ला लो ओए अरनी ले लपु आ नंग तुर लो ते नंग हारी पेन दाग हेम नंग के ले अतेम लु लो पेन अरनी ले लपु आ नंग तुर लो ते नंग हा इसी कुर हेम के दाम अतेम लु लो पेन अरनी ले लपु आ

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तब वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सूझता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
0: जी,
1: और फिर उन्हें बता देते थे कि ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे। राइटर लिखते थे, तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पर लिख दिया, इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुनें काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है।
0: अच्छा।
1: इस तरह की जो है वो धुनें बस जैसे आई बैठे के दिमाग में, तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी।

0: और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगत राम जी ने उसमें।
1: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
0: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
1: जी,
0: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
2: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिने संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वॉयलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
0: जी
1: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
0: जी।
1: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
0: अच्छा
1: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है ये क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे
0: अच्छा
1: कि वाह वाह ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनिया हारमोनियम पे बजाते थे
0: जी हाँ।
1: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते थे
0: अच्छा और
1: बहुत
0: उसमें
1: माहिर।
0: हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।
1: खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
0: जी
1: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था एक भक्तराम जी के पास होता था दोनों भाई मिलकर काम करते। बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को
0: जी
1: रिदमिस्ट के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे क्योंकि एक तख्लीक करना होता है एक क्रिएटिव काम करना होता है तो मगर मुझे अलाउड था मैं मुझे कहते थे तू आजा पुत्र पुत्र आजा तू आजा काका आजा तू इधर।

0: तो हमारे जालंधर में ना, तो वो भी जालंधर के थे, मैं भी जालंधर का सब, तो वो कहते तू तू बैठ, तू ना जावा। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
1: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे, तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए ही नहीं थे, उन्हीं की ये जोड़ी थी, तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ?
0: देखिए ये इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने,
1: जी
0: वो
1: हाँ।
0: बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि
1: नहीं
0: वो
1: नहीं मैं पूछ रही, मैं अपनी जानकारी
0: तो मैं तो उनके सामने मैं तो कुछ मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा, मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है,
1: अरे क्या
0: जितने बड़े वो थे।

0: गुणी कल्पनाशील संगीतकार के साथ साथ एक हंसमुख खुश मिजाज सरल इंसान भी थे हुसनलाल जी और भगत राम जी। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जो इनके शिष्य भी थे गुरु की यादों को ताजा करते हुए।
1: पंडित हुसनलाल जी को मैं जब मिला गुरु जी के पास इतनी पिक्चरें नहीं थी लेकिन म्यूजिशियन आला ग्रैंड और टीचर आला ग्रैंड भगत राम जी भी और हुसनलाल जी भी। हुसनलाल गुरु जी और भगत राम गुरु जी इतने लायक थे और इतने डाउन टू दी अर्थ और एक तो कंपोजर इतने एक्सीलेंट थे। और फिर उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि हार्ड वर्क और रियाज बहुत जरूरी है और रियाज बहुत करवाते थे और रियाज खुद बहुत करते थे गुरु जी।
0: मतलब अभी मतलब जब वो गुरु थे सिखाते थे तो भी रियाज करते थे लगातार
1: बहुत बहुत जबरदस्त 24 घंटे। मैं जब भी गया हूँ इनके यहाँ तो मैंने इनको या गाते हुए देखा है या वायलिन बजाते हुए देखा है।
0: अच्छा।
1: गुरु जी को
0: पूरी तरह संगीत में डूबे हुए थे
1: बिल्कुल।
0: अच्छा और... आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत
1: है जी?
0: आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो?
1: मैंने गाए थे।
0: हाँ कोई खास
1: है जी?
0: कोई खास गीत जो आपको याद हो?
1: अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसी याद नहीं। पहाड़ी में इनके दो तीन गाने थे
0: जी।
1: इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे।
0: अच्छा।
1: और वो इनकी लास्ट फिल्म थी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा लास्ट।
1: लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या ली है ना वो बहुत जरूर वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई।
0: अच्छा,
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और कोई खास बात?
1: और इतने अच्छे जेंटलमैन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद ये लोग हमेशा हंसते रहते थे।
0: अच्छा।
1: हमेशा खुश रहते थे और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए लेकिन रहना चाहिए लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ जी। मतलब
1: सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ। है जी?
0: जी
1: इन्होंने गाया ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा जो लिसनर्स थे बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इनको

0: देश की के सिंगर कौन थे जिन्होंने
1: अच्छा
0: गाया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था, यहूदी मैनियन
1: जी
0: जब आए थे यहाँ, उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा, इतना बड़ा आर्टिस्ट, ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट, मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं, इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं ये।
1: ये तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते थे
0: वायलिन भी बजाते थे
1: और दोनों बराबर दर्जे की, उच्च दर्जे, उच्च कोटि की।
0: और देखिए कि अगर 6 घंटे रियाज करते थे गाने का, इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था, मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे, इतना मतलब लगे हुए थे म्यूजिक में
1: जी
0: कि
1: हाँ,
0: इनको कुछ होश नहीं रहती थी। हाँ जी
1: अच्छा,
0: जी
1: आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे, उनकी बनाई तर्ज, कुछ याद आ रहा है क्या?
0: उनके गीत पुराने जो थे, बहुत जो पॉपुलर हुए,
1: जी हाँ,
0: बड़े अच्छे अच्छे गीत थे, हालांकि वो फिल्मी गीत थे। मुझे
1: आप कुछ गुनगुना सकते हैं? कोई बिगड़ी बनाने वाले, चुप चुप खड़े, वो दूर जाने वाले, कितने सारे।
0: याद है, मैं तो बचपन में गाता था वो, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी

0: मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, कि वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोद वादिका जरीन शर्मा जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलोडी कभी मरती नहीं है
1: जी,
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए, और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता था, हद के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी, आज सालों साल हो गए पर आज भी एवर ग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती
1: जी,
3: क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
3: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं
1: जी,
3: तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें
1: जी।
3: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के
1: जी,
3: तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं
1: जी। हाँ।
3: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है
1: जी,
3: ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया
1: जी।
3: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाए। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है, सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है
1: जी, हाँ, जी।
3: आपको अपने में कितनी लगन है वो लगन काम करती है
1: जी,
3: हर तरह से हर नए नए चीजों को

0: में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना,
1: जी हाँ,
0: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे।
1: हाँ जी,
0: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे। अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बाप रे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसनलाल भगत राम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसनलाल भगत राम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम चमकदार नमूना था।

कार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

0: ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत उनका अच्छा था। और फिर वो देखिए, वो भी आपने वो भी गाना आपने सुना होगा ना, तूने मेरा यार ना मिलाया।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत
0: ओ तूने मेरा यार।

हुसनलाल भगतराम सिने संगीत आकाश की धूम केतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखराकर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दी गए ऐसी नायाब धुनें कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुनें गुनगुनाकर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को।

0: संगीतकार जोड़ी हुस्नीलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम के सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई।
1: अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा, जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन, हम दोनों ही का
1: आपको नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य

0: मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजारी राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, पीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक

0: मुलाकात जॉयसेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की इबारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे, सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामू का संसार।

पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को ये हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर? हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

मलाई खाएंगे। अरे दीदी बच्चा थोड़ी है, मामा जी के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे।

0: क्या बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत है, बाजे पर बजवाएंगे
1: बजवाएंगे।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद।

0: ब्रह्मा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पे जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर

के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है। और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है, ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतर कर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर है या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हो, यानी चेचक के दाग हो, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चांद मामा, चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा, बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा, परियां, चांद, सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई, जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है, हमें बताइएगा।

0: हर गम से।
1: गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारामंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की टॉर्च हूं।

सप्तर्षि मंडल आकाशगंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अम्बिली अम्बावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ये ऐसा गाना है मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है, इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब हैं, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नजर से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नजर आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नजर आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नजरिए से उसे देखते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पोए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागिरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर, जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती, और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते, तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन, उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त के इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया की हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए, मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है। यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं मेरे एक साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरा था, और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की वो कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना, कोई बोल रहा वहां परियां रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है, उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया, हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं हैं जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है, जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी, और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहां ना डर था ना उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय

सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी। वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है, जो कभी भी लौट कर नहीं आता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था। हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है, और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजर आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ही मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा, निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई, आज माझा पाड़साला झोप का ग येतना ही। ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे और ऐसा ही हमारी एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है। लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे हम। स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का ज़माना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में हमें चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रही कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां उसे चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना होगा, कब डूबेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी हैं। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में बड़ोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपनी ही आंखों से

कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में मिलना चाहते हैं या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब, और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, ना कर तुम, तेरे कर तुम, ना कर तुम, हम तुम, नता हाथ, हिपाता, लता हाथ, पता पात, मेरा कस करामत,
1: ताते टीटा, ताते टीटा, ताते टीटा, थैया थैया थै, तकता तुम, तकता तुम, तकता न्या,
0: सपने में देखा सपना
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वहीं

0: एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती, कहती, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है, चांद सी महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है, और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा।
1: चंद्र

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को, सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं, क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहनें चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं, बहनें चंदा ही कहती हैं। वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे, बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान, चांद, सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना। आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम, और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है, और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या? गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है। वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं, क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है सूरज की दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काटती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए थे रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी

का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी, और हमें ये भी बताइए कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ? जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं, तो कई बार हमारी नजर चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as a preferred destination to build their careers and future in the space sector.
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है बहुत लोगों को हमें जोड़ना है हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूँ जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं
0: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे बदलाव न करें ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं
0: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said that his company has

0: India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining U.S. economic campaign. Again, speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining U.S. economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल

0: हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
3: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए

0: भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की, ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी, मिशन भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़, तेल्हारा, अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू डी कृष्णाराव नायडू अमृता और संतोष, मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा हेमलता वर्मा वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: कुछ कहता है।
1: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अरपा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में साहिल जाह्नवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम। और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: मानी, कह के मानी, अरे शीतक तो हमारे शहर के सामने ही रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने, कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें, संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल, इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बटके जरा बटके भाई साहब, मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय, तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय, टॉय के माने खिलौना, बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का, लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट न जाए हाथ से।
2: एक छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।

0: और के माने के नाम। तू किस बात पे हंसती है रे?
1: टी ओ वाई बॉय
0: होता है क्या?
1: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
1: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
1: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
1: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
1: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
1: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
1: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
1: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
1: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
1: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
1: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
1: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टी ओ वाई टॉय,
1: बी ओ वाई टॉय,
0: नहीं, बी ओ वाई।

0: ही देख रहा था।
1: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
1: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
1: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
1: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
1: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
1: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?
1: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
0: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
1: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
0: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
1: हाँ, मेरे भी।
0: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
1: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
0: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
1: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो। चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब बैठो सीट पर। उफ़ो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
0: अच्छा, ले लिया।
1: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
0: अच्छा अच्छा, छोड़ू?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो, ऐसे
0: ऐसे।
1: तुम क्या डरते हो, डरपोक कहीं के?
0: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
0: अब धक्का दो ना।
1: हैंडल ठीक से थामना।
0: अच्छा
1: देखो, मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
0: हाँ। अब कहो ना गो।
1: गो।
0: गिरा।
1: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
0: कहाँ हटाए?
1: लगी तो नहीं?
0: नहीं।
1: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
0: अच्छा।
1: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
0: हाँ, तुमने किससे सीखी?
1: खुद ही सीखी।
0: नहीं?
1: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
1: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
0: पापा ने।
1: नहीं
0: तो फिर?
1: तुम ही बताओ।
0: मुझे क्या मालूम?
1: मामा जी ने।
0: पापा मम्मी ने चलाने दी।
1: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
0: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
1: झूठ।
0: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
1: फिर?
0: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
1: चूहे?
0: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं, ताकि
1: ताकि चूहे ना ले जाए। तुम चूहे।
0: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
1: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से

0: बर्बाद हो जाते हैं।
1: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
1: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, काहे की तोड़ा मेरा। जानती हो हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
1: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ।
1: चल चल
2: आ जा,
0: अगर हमारे भी पंख होते।
2: हाँ, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुँच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
1: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं, शाबाश, आगे चलो आगे चलो। और आगे से मैडम डांटती है, पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
1: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी। मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
1: फिर
2: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा, शर्ट पर दाग क्यों है, बैड बॉय। फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा, ना ड्राइवर से।
1: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते।

0: अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: ओफो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। B.O.I. टॉय अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
2: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
2: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
2: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
2: डरपोक डरपोक,
0: खुद शर्मीली नहीं है?
2: नहीं, तुम

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद।
1: लपोन पोर नंगली तुम मुंबई पेन के पचे तक विविध भारतीय जय में आरजू लोंग तंगलो लाके आकाशवाणी दीपू नॉन स्टूडियो खुरिया पोर पोरफाई के थोमरा मिनट प्लिकेर फो प्लेंग जी तक दोगलो पोरफाई के थोमरा मिनट प्लिकेर फो प्लेंग लोते गुवाहाटी पेन के पचे तक कर बे जय में आरजू लोंग पोर।

आं देंजारि मांनि गेहांगलुन लंगपेन फुथरा दुनथुलुन जि रजेक सनां किलुन जि मंगल रंग पी लपेन बारी रंग फार पी किलुन लुन जथा आलुन लामथे चंहंगदिं लुनि नांफा

আই কানা দি আমাই দি

哎，外的男孩的怕，外的男，我来吧，阿龙白沙巴克的，早天了，哎，早一些怕的呢，哎，早不。

ไว้ดานางหาริพาไว้ดานางโอเลบา

आरुन्थु पिनिया सालम थे आरजुग था चोमांग बारिती की आसो कि पी पालोर लोमा बहुबिन माते कांगहनों आनी थे बिन लाम थे के मान आहुरी सी चोमांग बारिती की पु इनुर अमुने आसोपो पोई पुमवेद हेनलो लासे लबांग सो सो फान कांगहन ओं के आबिदी थेक थे देलो बांसो आउ सो फान केहंग आलिंगता पीबमलो आनके आबे दोकोगामात थेदुंग अंता कचिंग किनो जाय लापेन केचो किजुन अमोता काबहो दोकोलो लासे आलम थे कि पुदाम के बिहेक आहुत पेन आबे कांग होय अमात पादुके आमु वांगवे तेत पुआ फान लासे सार पालम थेलो चोमांग बारिती की आसु कि पी पालोर लो अमात बहुबेन माते कांहन ओं आनी थेबेन

वर्षाकी मी चेन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थांग वर्षाइदो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंगजे बिहू क्रिसमस निंका

Ah.

0: Oh, kenal kok.
1: Lah, kamu salah.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप

0: देखें, प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
4: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला

0: प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव

0: पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि ये बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
3: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मिस्टर मोदी अर्ज द स्पेस

0: গোল্ডেন বল। আলাদিন আজেরাই অফ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি ওয়ান দ্য গোল্ডেন বুট ফর স্কোরিং দ্য হাইস্ট নাম্বার অফ গোলস। বিশাল কাইত ওয়ান দ্য গোল্ডেন গ্লাভস ফর বেস্ট গোলকিপার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং উইটনেস দ্য ফাইনাল ম্যাচ অ্যাট দ্য স্টেডিয়াম অ্যান্ড প্রেজেন্টেড দ্য ট্রফি টু দ্য চ্যাম্পিয়ন্স। কল্যাণ লাহা, আকাশবাণী নিউজ, কলকাতা।
1: In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at the 10:30 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India with 300 for 5 in the first innings against host Sri Lanka at stumps on day one of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurel and Saransh Jain were the crease at the draw of stumps this evening. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 of 193 balls, while skipper Shubman Gill also scored a half century. Earlier, India won the toss and opted to bat. The visitors clinched the first test by 165 runs and currently lead the two-match series 1-0. India needs to win this match also to move into fourth place in the race for the 2025-27 World Test Championship final. Australia is at the top, followed by South Africa and New Zealand. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places for tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के शोबे में प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि वो इख्तरा से मुताल्लिक आलमी तासुर कायम करें। भारत आज खला का कौमी दिन मना रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी जहाजों की तामीर और बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया है। तिब्बी तहकीक की
3: ओ चेनाम द चेनाम लदा आकाशवाणी दी फुआलोंग आसन आसन कपाचे थांगावर साइड दु बुतेमाती हो
4: ए लदाखले अविदेत सिलांगमा आ जत्त दोलो
3: कुपी पिलो कपाचे थांगमे आसन मुंगके
4: कपाचे थांगमे आसन अंते दो पिकलो अर्जुइग नय हो माय मीटिंग के दो जर्नी अलम पांगरी पांगदोन आदामा सरारनी महांगे थे कबेरटा किथी के जांगा बेरटा के जोर के नाम अलम कुलारकी मिकांग पुओ बेरटा हेम की मिकिलुत अर्नी चोजुन चोमांकान রং কেয়ার আরঙাজে বিহু ক্রিসমাস নিংকান কি মিয়া হিরজুমিক কাচিপিয়া বেরটা লাপেনান পারাতা আসন আসন দোপ পিগলেন
3: এনতে কোসন লপাচিনি প কোদাগল কা হোমরি দাম নং জিকে
4: লাদাগল আকাশবাণী দিফু লং ল মেনা জং সে দাম দে পুলতে মোবাইল নাম্বার 9476880085 কালিতে 9101000
5: রোল অফ টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন ইন সোসাইটি পঠাক সোনালি তেরন বিপেন কেতান পলামজির আর জুগসিনা
6: আপ্রাংসে আকাশবাণী ডিপু রেডিও নাকার জুদুন কেদো আনারাদা তোমা ফানান্তা